0: सुसेनी समय सूचक यो जनमन को बोली रेडियो सुसेनी को समय हो। यति बेला दिउँसो को 2 बजे को छ।
1: अहिले तपाई सुन्दै हुनुहुन्छ 106.3 मेगाहर्ज मा जन मन को बोली रेडियो सुसेनी।
2: अत्यन्त जरुरी फोन नम्बरहरु सुन्दर हरिच दमकल फोन नम्बर 021-546-666 मोबाइल 98-40-82-69-72 प्रहरी चौकी विराट चौक 98-520-33-908 इलाका प्रहरी कार्यालय बेलबारी 98-520-90-137 सुकुना हस्पिटल विराट चौक 021-546-786 एम्बुलेन्स 98-520-54-886 रेडियो सुशली द्वारा जनहित में जारी।
3: अब तो बिहे बटुलो पूजा पुराण चार हिड़ पर्स भो गहना जस्ते आकर्षक सुंदर गहना तो किन्न पर्ने कहाँ किन्नी होला
4: ल ये सजिलो कुरा भर्खरै विराट चोकमा खुलेको माछा पुस्ने ज्वेलर्सबाट किन्नु नि। त्यहाँ त सम्पूर्ण आकर्षक र टिकाउका नयाँ पुराना डिजाइनका सम्पूर्ण गरगहना सुपथ मूल्यमा उपलब्ध छ नि। सम्पर्क माछा पुस्ने ज्वेलर्स विराट चोक मोरेन प्रोप्राइटर रोशन ढकाल राजेन्द्र ढकाल ताराराज ढकाल मोबाइल नम्बर 98-520-57-792 98-422-59-749 98-420-23-562 98-42-25-25-05

साथीवाला फूड प्रोडक्ट का उत्पादन भुजिया दाल मोट मटर फ्राई चिप्स को सफलता पछि चादनी भुजिया ले मीठो स्वाद में पालक पनीर को पनि उत्पादन शुरू करी बजार में ल्याई सकेको छ। तपाई हाम्रो शहर में उत्पादन भएको पालक पनीर खाऊ सधैं रमाउ। साथीवाला फूड प्रोडक्ट सुन्दर रहेछ 9 बुधबारे मोरङ प्रोप्राइटर रमन कार्की।

गुणस्तरीय सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवा हाम्रो प्रतिबद्धता। सुकुना सामुदायिक हस्पिटल प्राली सुन्दर हरेचा दश मोरन। अब सुकुना सामुदायिक हस्पिटल प्रालीमा कोशी अस्पतालमा कार्यरत अनुभवी स्त्री रोग तथा प्रसूति विशेषज्ञ डाक्टर विवेचना सिग्गेलद्वारा सम्पूर्ण स्त्री रोगको जाँच तथा उपचार सेवा प्रत्येक दिन बिहान 7 बजेदेखि 9 बजेसम्म। हाम्रा सेवाहरू: डाक्टर नारायण बस्नेत, एमबीबीएस एमएस, वरिष्ठ सर्जन, पेट रोग विशेषज्ञ, प्रत्येक शनिबार। डाक्टर रमेश बस्नेत, एमबीबीएस एमएस, वरिष्ठ हार्ट जोर्नी तथा नसा रोग विशेषज्ञ, प्रत्येक शनिबार। डाक्टर हिरालाल सहनी, एमबीबीएस एमडी, वरिष्ठ बाल तथा नवजात शिशु रोग विशेषज्ञ, प्रत्येक शनिबार। डाक्टर मनोज गोलाखे, मुटु रोग विशेषज्ञ, प्रत्येक शनिबार। डाक्टर नीता मण्डल, एमबीबीएस एमडी, वरिष्ठ प्रसूति तथा स्त्री रोग विशेषज्ञ, प्रत्येक शनिबार। डाक्टर राकेश मण्डल, एमबीबीएस एमडी, वरिष्ठ फिजिसियन इन्डोक्राइनोलोजिस्ट, ब्लड प्रेसर, सुगर तथा थाइराइड रोग विशेषज्ञ, प्रत्येक शनिबार। डाक्टर इक्वाल अहमद, एमबीबीएस एमडी, वरिष्ठ युरोसर्जन तथा मूत्र रोग विशेषज्ञ, प्रत्येक शनिबार। डाक्टर वरुण देव, एमबीबीएस एमडी, वरिष्ठ सर्जन नाक कान घाँटी रोग विशेषज्ञ, प्रत्येक शनिबार। डाक्टर नीरज खड्का, एमबीबीएस एमडी, वरिष्ठ छाला तथा यौन रोग विशेषज्ञ, प्रत्येक शनिबार। वरिष्ठ ल्याप्रोस्कोपिक सर्जन डाक्टर संजु घिमिरे, प्रत्येक दिन। वरिष्ठ स्त्री तथा प्रसूति रोग विशेषज्ञ डाक्टर सुभेश कुमार शाह, प्रत्येक दिन। डाक्टर शिवराज शर्मा, एमबीबीएस एमएस, क्यान्सर सर्जन, प्रत्येक शनिबार। डाक्टर सरोज अधिकारी, एमबीबीएस एमडी, मनोचिकित्सा, प्रत्येक महिनाको तेस्रो शुक्रबार। डाक्टर अनिस अधिकारी, एमबीबीएस, 24 घण्टा। डाक्टर शिशुपाल मण्डल, एमबीबीएस, 24 घण्टा। डाक्टर विकी शाह, एमबीबीएस, 24 घण्टा। डाक्टर अमोघ उपाध्याय, एमबीबीएस, 24 घण्टा। डाक्टर चन्दन शाह, रेडियोलोजिस्ट, प्रत्येक हप्ताको मंगलबार, बिहिबार र शनिबार दिउँसो 3:30 बजे। डाक्टर प्रदीप पाण्डे, सोनोलोजिस्ट, प्रत्येक दिन बिहान 8 बजेदेखि 10 बजेसम्म। डाक्टर सबिन लुइटेल, रेडियोलोजिस्ट, दैनिक दिउँसो 2 बजेदेखि 5 बजेसम्म। सम्पर्क अस्पताल डाइरेक्टर प्रमोद कोइराला, सुकुना सामुदायिक हस्पिटल प्राली, सुन्दर हरिचा 10 ब्राड चोक, मोरङ। मोबाइल नम्बर 98520 48247, फोन नम्बर 0215487।

0: अहिले तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ 106.3 मेगाहर्जमा जन मानको बोली रेडियो सुसैली।
1: अत्यन्त जरुरी फोन नम्बरहरू सुन्दर हरिच दमकल फोन नम्बर 021-546-666 मोबाइल 98-41-82-972 प्रहरी चौकी विराट चौक 98-520-33-908 इलाका प्रहरी कार्यालय बेलबारी 98-520-90-137 सुकुना हस्पिटल विराट चौक 021-546-786 एम्बुलेन्स 98-520-54-886 रेडियो सुशली द्वारा जनहितमा जारी।

0: click on the bell icon to get regular updates from Venus.
1: For more entertainment, log on and subscribe to www.youtube.com/Venus.
2: फिल्मी गाने से जुड़े रहने के लिए YouTube ऐप के बेल आइकन को प्रेस करें।
3: Come on.

0: किसी का इंतजार, वो जिससे मैं करती हूँ प्यार और जिससे करती हूँ मिन्नतें बार बार।
1: आइए तपाईं सुन्दै हुनुहुन्छ 106.3 मेगाहर्ज मा जन मन को बोली रेडियो सुसैली।